అనేది గురు ప్రభు. పుణమే గారు నవమి సజ్జావస్థి చుట్టి చుట్టి పాకి తురులగా कह लगा उसको क्या तू नौ महीने भी नहीं मैं नौ मिनट भी नहीं खाते सैयद गुरु जी शायद क्या भाई सज्जा गल तो गुरु का हुक्म ही मनिया है तेरी को क्योंकि हुक्म इस वक्त हुक्म दे मालिक की बख्शिश नाल जरा हुक्म देना उसकी रहमत भी ना तो हुक्म नहीं मनिया तो मैं जरूर मनना ये अपने आप रह जाएगा तो गुरु जान के तेरी सेवा ते जे भजे नसे गल तो सामने कोठी भी बंद भी कर रहे हैं मैं गुरु का हुक्म मनना भाई सिद्धा उठिया तुरंत लगा मैनू कौन है बंद करने वाला बुद्ध शाह ने मुरीदा ने इशारा किया इन्होंने पकड़ के भाई सज्जे कोठी च बनकर बुद्ध शाह ने मेरा बाल बच्चा भुख नाल मर जाए बुद्ध शाह ने क्या नहीं जिन्हें हुक्म दिता है वो आपे रक्षा करेगा यह तेरे मन की कमजोरी की रक्षा करेगी बुद्धू शाहवे तो गल्ला बुद्धू शाह दुन सुन गल्ला सिख धर्म जिगाड़ा बच खा के मुश्किल नाल उठाया उसू और मुंह च पानी पा के कहता सतगुरे की किया मैनू उधर कैद पता है मेरा बाल बच्चा सब रुक के मर्जी कौन खिलाती जाए कोठी बंद एक दिन बीतिया कुछ नहीं खादा पी दूजा दिन होया बुद्धू शाह ने किया सजे प्रसाद तक नहीं नहीं मैं भुख नहीं तीजा दिन होया सोचे लगा मैंने बार बच्चे तो भुख नाल मर गए हो गए तू भुखा क्यों मरना ठाकुर जी भुख बड़ी राज है भुख बड़ी पर्वन है फरीद ने क्या मौतों भुख मिली इंसान भुख पीते कई मेरी बड़िया बड़िया गलतियां कर मैंने की लिखा दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सब दुआर जमदूत एक दुख रोग लगे सन खाए व्याज न होने का सात पानी थकन लगी है नौ महीने भी समा नौ बीत जाए समय का पता ही नहीं लगता पलों दिया घड़िया घड़िया ने सके चिंता के दिन मिनटा के घंटे घंटिया ने पैर पैर के दिन दिनों के हफ्ते हफ्तिया ने महीने महीनिया ने साल साल सदिया सदिया के युग बीते जा रहे युग अखी केरे माट के पल पल भी विहारे पल पल करके ये आयु बीती पता नहीं मन जंजाल ना छोड़ी जम दिया दमा दिन के पैर पैर के घड़िया सबू कहना आव घटे पंछी नौ महीने मैं भाई सज्जा तेरे पौ पन मुकले हैं अज नौ महीने बीत गए हैं तू जा सकते भाई तू जाओ किधर जाऊ बाल बच्चा तो भुखना मर गया हूं कोई आसरा नहीं किड़े पासे जाऊंगा बुद्ध शाह ने कहा जी मेरे को गुरु को चला गुरु को बुद्ध शाह अब तो मेरा कोई बाल बच्चा बचे नहीं जी कोई बच भी गया होगा तो उन्होंने भी रोक के मरांगा कि गुरु का नाम भुल के नहीं जाना लुकी बंदी छोड़ के चंगा बंदी छोड़ गुरु नौ महीने की कैद दे मैं भी जाना सही गुरु शाह ने कहा भाई सज्जा ये भी कोई राज है तू नहीं समझ मच्छी की जाने सागर के डाव
پانی چڑھ بھی ہوئی مچھلی کو ساگر دانت نہیں تم کرے آج پھر پڑھیے ابھی بھی کہہ نہیں گرو اپنی دلیل پہ پرکھن لگے گرو کی سکھی کو اپنے خیال پر ارے غلط پانی لکھے ہے لکھے پیچھے سارے روپئے

की जिंदगी। सुदामे का नाम सुन लिया ही भगवान ने अपने तख्त को चाल मारी। यहां आ गए तो कहने लगे हो भगवान मेरा मित्र सुदामा, मेरा प्यारा सुदामा भगवान कृष्ण जी भजे जाए पहुंचे जिथे सुदामा खड़ जाए जाके कीता दूरों देख अयोधार जी ने दूरों देख दंडौत कर दंडौता कर दंडौत जान दे एक तो होते ना तो मत्था टेक ले एक है दंडौत दंडौत होते सारा श्री लम्मा पर परोस कर दिए दंडौत बंधन अनुभव अखबारे कितने कितने मुझे प्रेम यानी खास दिन जो गुरु हो गया के दंडौत कर सारा सही पूजा करके दो मिनट जुड़ के एक गुरु के नमस्कार भगवान कृष्ण जी सुदामे भी अगे जाके पहला दंडौत की दोनों देख दंडौत करे भाई साहब भी लिखते हैं।

आज बने हो सारस्वती बक्ता करके सारस्वती बक्ता करके जुग कोट गणेश के हाथ लखे हो जुग कोट गणेश के हाथ लखे हो।

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहे गुरु अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत

उस गोपाल राय की सेवा करते ने अकुल निरंजन जिदी कोई कुल नहीं जेड़ा माया दे प्रभाव उत्ते है उस गोपाल राय की भगत लोग सेवा करते ने भगती करते ने ते ओदे कोलों भगत दान दी जय जांचे संत जन उस गोपाल दी सेवा करके ते भगत

ते तंबू लुआने पर उस गोपाल राय का तंबू केड़ा है? ये सारा संसार चार दिशा

सरायचा है, तंबू है, इंसान जहाजा ते चढ़ लवे, राकटा ते चढ़ लवे, कितना भी यतन कर लवे, पर इस परमेश्वर दे तंबू विचू इंसान बाहर नहीं निकल सकता। ओदे घर विच बैकुंठ है, अते सपत लोक समान पूरी आले, ए जड़े पताल ने ए ओदे घर विच

लक्ष्मी कुमारी उस परमेश्वर दे घर लक्ष्मी कुमारी है। ओदे हुक्म तो बगैर कोई लै नहीं सकदा, जे कोई लै भी लवेगा ते दुखी होवेगा।

देव जी नु क्यों चारना पिया। हिंदुस्तान दे बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने भगत नामदेव की शोभा सुन के नामदेव नु अपने दरबार च बुलाया ते बादशाह कहन लगा, ऐ नामदेव मैं सुने अल्लाह तेरा यार है।

महादेव ने बाणी च बयान कीता कि बादशाह कहन लगा ऐ नामदेव ऐ गां मरी हुई पई है इस नु जिंदा कर दे जे गां जिंदा ना होई ता मैं तेनू जानू मार देंगा। नामदेव जी बादशाह दे ख्याल ते अपनी विचार शब्द विच इस तरह

ते पग जी आप लिखदे ने करे गजिंद सुंड की चोट नामा उभरे हर की ओर ओ गज हाथी

बड़ा क्या है पुत्र, ऐ मां जा, मैं तेरा पुत्र नहीं, ना तू मेरी मां है। मैं तेनू छड़ सकदा पर राम दा नाम नहीं छड़ सकदा। पिंड पड़े तो हर गुण गाए, पिंड क्या है शरीर नू, इस शरीर भावे खत्म हो जाए।

कैद खाने पा दिता गया, सत घड़िया का समा दिता, पर सत घड़िया बीत गई, गऊ हाली तक जिंदा नहीं हुई। भगत जी आप बयान करते हैं।

का नाम देव जी ने किया ऐ परमेश्वर, और कुछ ना कर बस गां जिंदा कर दे। परमेश्वर ने कृपा की थी ते मरी हुई गां जिंदा हो गई, बच्चे समेत ते नाले दो दुधियां दो मटकियां भी भर गई।

हाथ जोड़े भगत नामदेव दे चरणा ते मत्था टेकिया आखिया ए नामदेव बख्शी हिंदू मैं तेरी गाए मैनू अपनी गां समझ के माफ कर दे। तो नामदेव जी ने बादशाह नूं उस वक्त

ऐ मोहम्मद बिन तुगलक बादशाह, मेरी प्रीख्या लैण दा तां फायदा है जे हुण तू भी सच ते चलें, किसे नूं दुख ना देवें।

बहुत सारा सोना चांदी भेंट कीता, पर नामदेव जी ने उस सारा सोना चांदी गरीबां च वंड दिता। आप तुर पए। बादशाह ने एक बड़ा कीमती दुशाला कह लो, सेज कह लो, बड़ा कीमती दुशाला सेज नामदेव वास्ते अपने दरबारियां नु दिती। बादशाह ने दरबारियां नु कहा, जिथे नामदेव जी बैठन ऐसे जा नामदेव नु भेट कर देनी, ते नाले मेरे वल्लों कहना कि बादशाह दी इच्छा है कि ऐसे जा किसे नु दान नहीं करनी, ए वछा के तुसा आप उत्ते बैठना है। नामदेव जी तुर पए, नाल बादशाह दे दरबारी तुर पए। नदी किनारे भगत नामदेव जी बैठे ने।

दिसे जा तुसा आप वर्तनी है संभाल के रखनी। नामदेव जी ने ओ कीमती से जा चुकी ते नदी विच सुट दी। दरबारी वापस चले गए। बादशाह नु बेनती की, बादशाह भगत जी ने तुहाडी से जा पानी विच सुट दी। बादशाह नु बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया, पर कर कुछ नहीं सी सकदा। दरबारियां दे नाल फिर बादशाह उस नदी किनारे भगत नामदेव दे कोल आया ते कहन लगा, भगत जी मैं बड़ी श्रद्धा नाल सजा दिती सी, तुसा नदी विच सुट दिती। नामदेव जी कहन लगे, बादशाह तू संभालण वास्ते कहा सी, असी तेरी सजा पानी विच संभाल दिती। बादशाह कहन लगा, महाराज जे संभाली है ता मैनू एक बारी दिखा दियो ताकि मैनू तसली हो जावे। उस वक्त भगत नामदेव जी कहन लगे, चंगा फिर बादशाह अपनी सेजा देखनी है ता पानी दियां लहरां वाल तक, जदू तेरी सेजा आवे ता पहचान लवे। बादशाह पानी दियां लहरां वाल तकन लग पिया।

भगत नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान ता कृष्ण भगवान दी प्राप्ति हो जाती, अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार सागर।

जे गुरु दयाल हो जाए देहोरा फिरे देवरा कहते मंदिर ता ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा नामदेव नू जदों पंडता ने नीवी जायदाद समझ के मंदिर विचों कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा मंदिर घुमा दिता तो भगत जी कहंदे ने

देव ऐसे गुरु की शरण विच रहिंदा है जेड़ा गुरु इन्ना कुछ देंदा है उस तो बगैर ए नाम देव किसी होर की शरण नहीं।

उस परमेश्वर दे घर की है। भगत जी ने बयान कीता जांचे कर निकट वर्ती अर्जन ध्रुव प्रहलाद अमरीक नारद नेजे सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला एते जी जांचे हैं करी सर्व

व्यापक अंतर अरे प्रणमय नाम दियो तांची आण सगल भगत जांचे निशान। ऐ बादशाह ओ परमेश्वर इतना ब्यांत है ए जो मैं दसे है ए ता कुछ हुई नहीं सब कुछ होता है ओ बनान वाला है प्रणमय नाम दियो तांची आण। नामदेव आखद है ऐसे गोपाल राजे दी असी शरण विच हां ते सारे भगत सारी दुनिया ओदा ओट ते आसरा लैंदी है। इस करके भाई राजे हो ताकतवर हो ता मान ना करो क्योंकि उस गोपाल राय तू कोई भी वड्डा नहीं।

प्यास लगी, पानी दी पाल कीती, एक खूह नजर आया। उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन, क्योंकि पानी बहुत नीवा सी। खूह दे विचों ओ पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल। पानी देखिया बहुत डूंगा है, बहुत नीवा है। पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंचे हुए महापुरश सन, अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे, पानी पीता। पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए, चेलिया नू पियाया, कुछ लोकां नू भी पियाया ते नामदेव नू कहा, नामदेव तू भी पानी पी लै। नामदेव जी कहन लगे, मैं पानी नहीं पीना जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे, फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है, तू भी भगत है, तेरे विच भी शक्ति है, तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू, मैं पानी तां पीना जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे, नहीं तां मैं पानी नहीं पीना, क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा है कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उस खूह दे कोल बैठ गए, हाथ विच खड़त

तीनों के इंद्र बरसात जिस तरह धरती बरसात नाल प्यार करती बरसात पवे ता धरती खिल उठदी कुसम फुल नू के बास खुशबू जिस तरह फुल दे नाल पवरा

मान सरोवर हंसला हंस जेड़े ने मान सरोवर नाल प्रीत करदे ने मान सरोवर ते रहंदे ने भगत नामदेव जी बयान करदे ने चकवी को जैसे सूर बाल है चकवी जिस तरह सूर दे नाल अपने

तरनी के औरत नु कांत पति जिस तरह औरत पति नाल प्रीत कर दी है, ऐसे तरह है परमेश्वर मेरे रमैया।

सिद्ध मुनि ऋषि सारे चाहते ने ऐ परमेश्वर तेरे दर्शन हो जाए, पर बिरले काहू डीठला किसे विरले नूं ही

जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मानवे च भी ए परमेश्वर तू है गए ए नामदेव भी तेरे नाल इन्ना प्यार कर दे जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होने।

बनारस रहा करते सन। किसी ने पूछिया, कबीर तेरा गुरु कौन है? कबीर साहब कहन लगे, गुरु मैं ता किसी नु गुरु तारिया नहीं। ता उस के जिदा गुरु नहीं ओदी गति नहीं हुंदी। कबीर तू गुरु जरूर तारन कर। कबीर साहब कहन लगे, फिर गुरु किड़ा है ऐस वेले जेड़ा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी होवे, उस नू मैं गुरु धारण करा। तां दसन वाले ने कहा, कबीर स्वामी रामानंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हैं, ओ गुरु धारण दे लायक ने, तू उन्हां कोल चलिया जा। पर एक गल है, स्वामी रामानंद ऊंची जात दे ने, तू है जुलाया नीवी जात दा। स्वामी जी दे चेलिया ने तेनू स्वामी दे लागे नहीं लगन देना। पर एक तरीका है, स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे ने। जे तेनू गुरु दी लोड़ है, अमृत वेले उठ, जेड़ियां पौड़ियां गंगा दियां स्वामी जी उतरदे ने उन्हां पौड़ियां ते जाके लम्मा पै जा, जे तेनू गुरु दी लोड़ है। ए सुन के कबीर साहब कहन लगे, ठीक है, क्योंकि गुरु दी लोड़ सी। कहन लगे, मैं अमृत वेले उस रस्ते ते जाके लम्मा पै जावांगा जिस रस्ते तू स्वामी रामानंद रोज सवेरे अमृत वेले गंगा इशनान करन जांदे ने। रात पई पर कबीर साहब नूं नींदर नहीं आ रही, क्योंकि गुरु दी लोड़ है। ते जिनू गुरु दी लोड़ होवे उनू दुनिया भुल जांदी है। दो ही गल्लां ने, या दुनिया खुश कर लीए या गुरु नूं खुश कर लीए। जे ता गुरु नूं खुश करना है ते फिर दुनिया दा त्याग करना पवेगा। दुनिया दा त्याग घर बार छड के नहीं, घर बार तियां पुत्रां माया विच रहंदियां होया परमेश्वर नूं याद करना, माया विच रहंदे होया माया दे उत्ते काबू पा के रखना, मोह माया तो उत्ते उठ के रहना, ए दुनिया दा त्याग हुंदा है। दुनिया छड़ के जंगलां विच जाना कोई त्याग नहीं। कबीर साहब कहन लगे, मैनू गुरु दी लोड़ है। आप अधी रात हुई, घरों उठे ते गंगा

अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नावण ताई स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के रोजाना ही गंगा इशनान करने वास्ते

बड़ी मस्ती विच राम राम कर दे तुरे आ रहे ने। गंगा दियां पौड़ियां उतरन लगे, देखे आ पौड़ियां दे विचकार कोई सुता होया है। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू। ते कहंदे ने भांडे विच जेड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा। जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जेड़े महापुरुष ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नू ते नाले के उठ राम के राम कहो। ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आप बयान करदे ने।

ऐसा सुर हो गया स्वामी रामानंद पैर लगा के एक कहन दा के उठ राम के राम को पाए गुरुदास जी कहंदे ने राम कबीरे भेद ना पाई राम विच ते कबीर विच कोई फर्क ना रहा। इशनान करके स्वामी रामानंद चले गए। कुछ समय बाद कबीर साहब स्वामी रामानंद के आश्रम वाल तुर पए। स्वामी रामानंद जद इशनान करके जाते सन दरवाजा ढो के चौंकड़ा मार लेंदे सन और मन करके परमेश्वर नू इशनान कराया करदे सन। इशनान कराण अज भी बैठे मन करके कपड़े भी पवाए सिर ते ताज भी रखे आ मुकट कलगी भी रखी पर हार पाना भुल गए। कबीर साहब स्वामी रामानंद के दरवाजे के बाहर बैठे। उस पासे स्वामी रामानंद सिर ते मुकट रख बैठे ता ख्याल आया कि मना हार ते गल विच पाया नहीं हार जो तक ना पावा पूजा पूरी नहीं होनी जे ता हार मुकट ला के पावा ताई सोभा वाली गल नहीं मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकता क्योंकि हार छोटा ते चिंता विच नहीं कि सिर ते सजाया मुकट लाना ठीक नहीं ते मुकट दे उत्तों हार पै नहीं सकता किवें करा। ता कबीर साहब बाहर बैठे सन उन्ना जान लिया कि स्वामी रामानंद क्यों परेशान ने क्योंकि जिहड़े नाम जपदे ने उन्ना विच ते परमेश्वर विच भेद नहीं रहिंदा ओ एक दूसरे दे मना दियां जानदे ने। ते कबीर साहब ने बाहरों कहा स्वामी जी हार जी मुकट तो नहीं पै रहा ते हार दी गंढ खोल के हार गल विच पा के फिर गंढ मार दियो। आवाज सुनी स्वामी रामानंद बड़े हैरान होए उठ के बुआ खोलिया बार कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे तू कौन है। कबीर साहब कहन लगे मैं कबीर हां तुसा मैनू गुरु दीख्या दीती। स्वामी जी कहन लगे मैं ता तेनू गुरु दीख्या दीती नहीं अपना चेला बनाया नहीं। ता कबीर साहब कहन लगे स्वामी जी तुसी गंगा ते अमृत वेले इशनान करन गए मैं पौड़ियां ते लम्मा पिया सी तुसा अपना चरण मेरे शरीर नू लाया ते कहा सी उठ राम के राम को उदों दा मैं आप दा सेवक बने। ए सुन के ते स्वामी रामानंद कहन लगे कबीर तू सेवक नहीं तू ते मेरे नालों भी अगे चला गया है तेरे विच ते राम विच कोई फर्क नहीं रहा क्योंकि तू ते मेरे मन दी भी गल जान लई है। और स्वामी रामानंद जी दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है कत जाइए रे कर लागो रंग। ऐसा असर होया गुरु दे मिलन दा के कबीर विच ते राम विच कोई फर्क ना रहा।

चौकी ते रखे है। रोटी पकाई अते लस्सी रिड़की, लस्सी रोटियां ठाकुर दे अगे रख के ते तन्ना हाथ जोड़ के बैठ गए है।

तीसरा दिन चढ़िया ते तन्ना कहन लगा हों भी मुंह ना जुठाल सा तू रुठा मैं क्यों ना सुखावे ऐ परमेश्वर जे तेरा धर्म है के पंडता दे हथों खाना ते मैं भी जाटना फिर मेरी भी जिद है कि जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी कुछ नहीं खाना तू मेरे नाल

0: परमेश्वर नु रोटी खवाई तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे लै भाई तन्ने आ रोटी तो असि खा ली हुण दस तेन चाहिदा की तू याद कीता मैं आया हुण मंग तेन की चाहिदा ता तन्ने ने हाथ जोड़ ले कहन लगा भगवान मैनू ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दी लोक तेरी आरती करदे ने पर मैं तेरा आरता करना आप जी बयान करदे ने भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप
1: गोपाल तेरा आरता
0: गोपाल कहंदे ने दुनिया नू पालन वाला परमेश्वर

ते कपड़े भी सोने चाहिए। इस करके कृपा कर सोनी जुत्ती भी होवे पैरी पाई अते बड़े सोने कपड़े भी।

परमेश्वर घर बन गया, दाल आटा घ्यो ये भी मिल गए, पैरी पाण वास्ते जुतियां, सोने पाण वास्ते कपड़े भी मिल गए, अनाज भी मिल गया, गां ते मज भी मिल गई, आन जान वास्ते एक घोड़ी भी मिल गई, सोना घर बन गया। पर एक चीज की कमी है, भगवान कहन लगे धन्या, ओ केड़ी कमी? कहन लगे परमेश्वर, ओ कमी है घर वाली दी। भगत जी कहंदे ने, घर की गेहन चंगी, घर वाली आज्ञाकार, तेरा नाम जपण वाली चाहिए। भगत जी अपनी बाणी विच

तने ने नाम जपे है, प्यार कीता ओ तन्ना अनपढ़। नाम जपन दे करके दर्शन करन दे करके किथे जा पहुंची है, ओ तन्ना अनपढ़ बाणी उचारन लग पे। उस तन्ने ते तन गुरु अर्जुन साहब ने होर कृपा की थी, तन्ने दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज की थी। तन्ने नु अपने नाल बठा लिया। जद भी कोई इंसान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नु मथा टेकदा है, ओ भगत तन्ने नु भी मथा टेकदा है। भगत तन्ना जी दे शब्द गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज ने, जेड़े उपदेश करते ने, ऐ भाई उस परमेश्वर दी बंदगी करो, सारयां दी उपालना करन वाला है, तू बंदगी कर, तेरी भी उपालना करेगा। दुनिया दी चिंता छड़, नाम दी चिंता कर, क्योंकि उदा नाम बड़ा प्यारा ते बड़ा सोहना है।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

सब मर्यादा पूरी हो गई। हुण तक महाराज गुरु बने रहे ते हुण आप जी दी वारी सिख बनन दी सी। आप बड़ी निम्रता नाल बोले, हे अकाल पुरख दे खालसा जीओ, तुसा सारी दुनिया नू अमृत दी दात बख्शनी है। सब तो पहला दास नू भी अमृत दी दात बख्श के गोविंद राय तो गोविंद सिंह बना लवो। भाई दया सिंह जी ने कहा, महाराज अमृत लेना है ता इस दा मुल भी देना पवेगा। असा सिर दे के अमृत प्राप्त कीता है, दसो आप इस बदले की दोगे। हजूर ने सिर चुका के कहा, प्यारे भाई दया सिंह जी, जे सिखा ने अमृत बदले सिर दिता है ता सिखा दा गुरु इस बदले सरबंस देवेगा।

0: गुरु साहिबां दी साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ आओ रसना पवित्र करिए पातशाह दी बख्शी फतेह दी सांझ करो ते सारे गज वज के आखो जी
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: बाबर बादशाह दी करड़ी कैद अंदर गुरु नानक ने पीसियां चकियां सन तत्ती तवी ते बैठ के गुरु अर्जन नीहां कौम दियां कीतियां
1: पक्कियां सन।
0: मीरी पीरी दे मालक पातशाह ने जुलम राज दियां उड़ाइयां फकियां सन तेग बहादुर हिंद दी बन चादर पत्ता लहंदियां अनेकां
1: ढकियां सन।
0: जदों सारियां हिलियां तो गल लंगी तेगा गुरु गोबिंद ने
1: चकियां सन।
0: प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर मोहम्मद लतीफ लिखता है The death of Guru Arjan is a great turning point in the history of the Sikhs. Pav Guru Arjan Dev Ji di shahadat Sikh itihas vich bada vadda mod sabit hoi. Pancham Patshah Guru Arjan Dev Ji di shahadat to baad 11 saal di umar chardi jawani chheve Patshah Guru Hargobind Ji Maharaj Guru Gaddi utte baithe. Bhai Gurdas Ji likhde han पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरुपारी अर्जन काया पलट के मूरत हरगो बिंद सवारी चली पीड़ी सोडिया रूप दिखावन वारो वारी दल भंजन गुर सूरमा बड़ योदा
1: बहु पर पुकारी।
0: गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा योदियो चंगे शस्त्र घोड़े अते जवानियां भेट करो। अमृतसर साहिब इलाही फौजी छावनी विच बदल गया। 1609 ईस्वी विच गुरु पातशाह ने अकाल तख्त दी सिरजना कीती। साहिबा ने कहा एक ढाडी जथा मंगवाया जावे। भाई विधि चंद जी नथे अते अब्दुल्ले दे ढाडी जथे नू लेके आए। जदों नथे ने फेरिया संगी ते गज ते अब्दुल्ले ने मारिया ढड ते हथ तां सूरमियां दे डौले फरक ला दिते। फिर जदों लगियां धौंसियां ते चोटां तां पंजाब दी सर जमीन गूंज उठी। गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने मीरी ते पीरी भगती ते राज शक्ति माला ते खंडा जोश ते होश शांति ते क्रांति बाणी ते कुर्बानी सब एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठियां हे

ऐसा नहीं कि मंगना माड़ा, हां मंगना चाहिए है, पर मंगना किवें है ते मंगना की। हुण साहिब गिनती पहले उन्हां दी दस देने कि जो मंग रहे ने, कोई मान मंग रहे, मान दा भाव है इज्जत रिस्पैक्ट, तान मांगो, तान दा भाव है जोर विल पावर ताकत, धन लक्ष्मी सुत दे कोई धन मंग रहे, मनी माया मंग रहे, सुत कहिंदे ने कोई पुत्र मंग रहे, लक्ष्मी कहिंदे ने कोई स्त्री मंग रहे। हे परमात्मा, जिन्हें मंगते उन्नियां उन्हां दियां मंगा, हर कोई मंग अलग अलग कर रहे है, पर सब दियां मंगा तू पूरी करी जा रही। मान मांगो, मान इसलिए मंगया क्योंकि मान तो बिना, इज्जत तो बिना जिंदगी अधूरी। संसार विच रिस्पैक्ट इज्जत होनी बड़ी जरूरी। आ तुसी वेख लो, कि निर्धन नू, कमजोर नू कदी किसी ने सन्मानिया नहीं, नेड़े बिठाया नहीं, इसलिए कहिंदे ने मान मंगे आ। फिर तान मांगो, तान कहिंदे ने जोर भी मंगे आ, जो तेरा दिता होया मान बरकरार रह सके, उन्हूं सांभ सका। धन लक्ष्मी सुत दे, धन भी होना बड़ा जरूरी है। साहिबाणी विच कहिंदे ने ना, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे चित ना धरे। निर्धन नू, गरीब नू कोई आदर नहीं दिंदा, इसलिए इन्हां चीजां दा होना बड़ा जरूरी है। मान मांगो, तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत दे। परमात्मा दे तन होवे, लक्ष्मी स्त्री भी चाहीदी है। भगत धन्ना जी कहिंदे ने, घर की गेहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। घरवाली भी चंगी होनी चाहीदी है, सुगुण सुशील सियाणी होनी चाहीदी है। ते कहिंदे ने फिर सुत

फिर मंगन जाइए। ऐसी मंग ना करिए जे दोबारा मंगनी पै जाए। कहते मंगना भी है तो एको बार मंग लो, क्योंकि परमात्मा को जो असी मंगना है वह मिल जाना है। तो मंगन लगे इस गल नू सोच लेना चाहिए कि मैं मंग की दे। हुण सहिब सानू यह गल समझांदे ने